जहांगीर सिंहासन ते बैठा है, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी देने। जहांगीर सिंहासन ते बैठा है, छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ग्वालियर दी जेल विच बंद ने। झूठ ते सिंहासन ते बैठा है झूठा औरंगजेब, सच चांदनी चौक दे शहीद हो रहे, जला गर्दन उड़ा रहे ने। झूठा सूबा सरहंद ओते सिंहासन ते बैठा है, पर धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे मासूम लाडले सच दे मजस्मे दीवारा दे चिणे जाए। हुण मैं इन्ने ही टूक दोहरा के था कि मैं लड़ी जो छेड़ी हुई सी वो अर्ज करा, वक्ती तौर ते झूठ दी जित आउंदी है, लेकिन कूड़ ने खुटे नानका ओड़क सच रही। बाबर नू ते अज कोई पुछण वाला नहीं, गुरु नानक दी जय जयकार सारी दुनिया च। जहांगीर दी कबर ते ते अज दीवा जलाण वाला भी कोई नहीं, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दी जय जयकार, उन्हां दा संदेश उपदेश घर घर विच पड़िया जा रहा है, सारी दुनिया च गाया जा रहा है। एक दफा बंबे तो बाई रोड हजूर साहब मैं जा रहा सी, रस्ते च औरंगाबाद आउंदा है, ते औरंगाबाद तो पहले आउंदा है खुलदाबाद। खुलदाबाद विच औरंगजेब दी कबर है, शायद आपको पता हो। ख्वाजा मईउद्दीन चिश्ती दा जिहड़ा पोतरा सी ओदी कबर उत्थे है खुलदाबाद दे च। औरंगजेब ने वसीयत कीती सी मेरी कबर ओदी कबर दे कोल बनाना, क्योंकि वह फकीर सी वली अल्लाह सी, गुनाह कमांदे सन, भी चलो एक फकीर दी कबर दे कोल मेरी कबर होवे ते शायद मैं दोजक तो बच जावां। लेकिन उसने इस्लामी शरां दी पाबंदी निभांदे आया हुक्म कीता सी कि टोपियां बना के कुरान शरीफ लिख के वो जो बाजार च बिकिया ने ते ओदे पैसे जो मैं कट्ठे कीते ने मेरी कबर ते ओही खर्च करना, मेरी मैयत ते ओही खर्च करना, बाकी नहीं। शायद आपनों पता होवे खजाने दे पैसे दी रोटी नहीं खांदा सी, अपनी मेहनत दी रोटी खांदा सी। ये इतना वड्डा अपने आपनों परहेजगार साबित करदा सी। लिखत ते मुताबक जो ओ पैसे कठे हुए ओ दो दिनार ते अठ दस दरम करके लिखे हुए, ये तीन चार रुपए बनते ने उस हिसाब के नाल, ज्यादा नहीं बन। क्योंकि इधर अरब देशां जो सिक्का चलता उन्होंने रियाल या दिनार कहते हैं, उन्हें रुपए का नाम दिनार रख दिता। इतने पैसों ते कच्ची कबर ही बन सकती सी, पक्की नहीं, तो अज भी उत्थे कच्ची कबर है। उदे चारों पासे निजाम हैदराबाद ने हुण संगमरमर दी जाली बना दिती है, कबर कच्ची है। मैं सारा दृश्य देखे है, क्योंकि ख्वाजा मई दिन चिश्ती दा जिहड़ा पोतरा है ओदी जिहड़ी मजार है बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, रस्ते दे रोड दे उत्ते ही है, हाईवे थे, तो मेरा देखण नूं जी कीता भई इन्ने सुंदर मकबरे है, गुंबद इतने आलीशान। बाद च पता चलिया ख्वाजा मईउद्दीन चिश्ती दे पोतरे दी ये मजार है, और बाद च भी पता चलिया नाल औरंगजेब दी कबर है कच्ची। ये सब कुछ देख के

अधिक अहंग बुद्ध बांधे प्यारे, इन विद मिल न जाई मैं किए कर्म अनेका हार परयो, स्वामी के द्वार है दीजे बुद्ध विवेका। पुराण पढ़े का क्या गुण, सुनो इस बिनती नु पीर साहब, वेद पढ़े पुराण पढ़े कुरान पढ़े की पर की पला होया। कहन लगे मैं इना को चेते कर लिया, वैसे शब्द किते खुल के अर्थ हूं गुरबाणी दे समझ पै जाए, जेडे आपा भी झगड़िया च पाए ना, हालत साड़ी भी हुई है। कहने इन्हें सारे वेद चेते ने, एदी खोपड़ी च इना को चेता। कहन लगे तेरे ग्रंथा दा ज्ञान इस तरह जिवें खोते दी पिठ उत्ते किसी ने चंदन ला दिता होवे। सुनो चंदन कीमती है, खोते कोल समर्था है भार चुकण दी, पर उन्हूं इन्नी बेसमझ नूं समझ कोई नहीं जिहड़ा मेरे पिठ ते वे कीमती किन्ना कूक है। कई वारी धर्म दे ग्रंथ दे शब्द कंठ हो जांदे ने गुरमुखो, उहदी कीमत दी सार नहीं नहीं पता हुंदा। वेद पुराण पढ़े क्या का गुण, खर चंदन जस पारा, राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा। वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाहीं, फिर ज्यों बेतालिया। नाम नु तां सुने ने बस तुकां कढ़ कढ़ के लड़ना शुरू कर दिता। महाराज भाई साहब ने कहा वेद कते भुलाए कै मोए लालच दुनी शैताने, सच किनारे रह गया खै मरदे बामण मोलाने। उस कॉन्सेप्ट च गल कही गई, वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान कपिख है, हर चीज देखिए। पर महाराज अगे बचन कर रहे, पौन आहार, पौन अहवा जी आहार दर्थ आप सारे जाने, खुराक भोजन। कई ऐसे ने जेड़े सूक्ष्म हो जाते ने, रोटी नहीं खाते, वह पौन नू आहार बनाते ने। महाराज कहते मैं ये भी देखे जी, पौन आहारी जति जत तार, जेड़े जमांदरू बाल जति जिन्होंने यत नू धारण किया, उन्होंने ग्रिस्त नू अपनाया ही नहीं। महाराज कहते ने पौन आहार जति जत तार, सबै सो विचार सबै दर ते सारे। कईया ने पाठ कट्ठा किया सो विचार, जे थोड़ा जा वेख लीए चंगे विचार वाले बंदे जेड़े चंगे ख्याल देन वाले सन समाज। महाराज कहते ने पौन आहार हवा नू पखण वाले, जत नू धारण करन वाले, सबै सो विचार हजारक हजारक हजारां कू, एक नहीं हजारा पौन हारी देखे, हजारा जति देखे, हजारा जेड़े ने अपने आप नू ब्रह्मचारी कहन वाले देखे, समय सो विचार हजार के देखे हजारा देखे। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुसी ये तीन तुकां च तीन पंक्तियां च ये बख्शिश कीती, पर आखिर तीर्थां दा इशनान भी तां कर्म बड़ा कठिन है ना। दया करनी, दम रखना, दमन करना, संयम रखना, करन बड़े औखे ने। सच्चे पातशाह किताबां पढ़नियां ग्रंथ पढ़ने बड़ी एनर्जी लगती। तुसी ये भी कह दिता पौन हारी कोई साधना है तो पौन दा हार कीता, बड़ी कमाई होवे तां ही बंदा जीव दे चस्के ते रोटी ते काबू पाए। महाराज जिन्हां ने ग्रिस्त भी नहीं धारण किया, अपने आप नूं रोक के रखिया, पौन आहार जति जत तार, समय सो विचार हजार के देख हजारा। महाराज कहते मैं देखे जी सतगुरु, फिर का कहना की चाहते हो? महाराज कहते बस इको गल कहनी चाहना, श्री भगवान भजे बिन भूपत, दान कर रहा पर सिमरन नहीं कर रहा, विखावे दा तीर्थ नहा रहा पर अंदर दी मैल नहीं धो रहा, बार मुखी इंद्रिया दा दमन करदा पिया पर फुरने ते काबू कोई नहीं, मनवा काबू च नहीं। महाराज कहने बार मुखी पाठ करदा पाठ जबान कर दी, मन पता नहीं की पढ़ी जांदा। देखो इस गल नूं सुनो गुरु साहब जी की, ए खंडन दी गल थोड़ा जी, ए तां महाराज सुमार्ग पांदे पए आ, सही रस्ता दस रहे। सतगुरु कहंदे ने श्री भगवान भजे बिन भूपत, श्री भगवान परमात्मा वाहगुरु जी सब दा श्रोमणी माया दा भी पति, इत्थे भूपत दर्थ दास ने वाहगुरु मालक कीता, क्योंकि इहदे विच राज साज दा जिक्र नहीं, इह तां सारा कर्म कांडियां उहनां दा जिक्र है जिहड़े कठिन तप कर रहे आ। गुरु साहिब कहंदे ने श्री भगवान भजे बिन भूपत, उस मालक वाहगुरु दे

0: वचन कर रहे ने, मेरे मन जपिए हर भगवंता। मेरे मन का अर्थ आप समझने के, मेरे मना जपिए उस परमात्मा नु, हरि नु, भगवान नु, उस पार ब्रह्म परमेश्वर दे नाम नु जपना करिए।
1: नाम दान दे जन अपने,
0: ओ पार ब्रह्म परमेश्वर अपने जन नु, अपने सेवक नु नाम दा दान बख्श दे खान।
1: दुख दर्द का हंता,
0: फिर उस दा नाम जपन नाल जेड़ा नाम दिता है, एक ता ओ शरीर दे दुख, मन दे दुख, आत्मक दुख उन्हां नू दूर करदे ने, ओ दर्दां नू दूर करदे ने। वैसे खंता दा लफ्ज़ी अर्थ हुंदा है दी नाश करन वाला, मारन वाला। हे मेरे मन, उस पार ब्रह्म परमेश्वर जी दे नाम नू जप, जो नाम दा दान देंदे ने, ते जिन्हां दा सिमरन करन दे नाल दुखां दा, दर्दां दा, कलेशां दा, बिघनां दा, सच्ची मुची आद उपाद ब्याद दा, जा तिन्ना तापां दा नाश हुंदा है। असी सतगुरु जी दे अमृत बचन पढ़ने, तीने ताप निवारण कारा दुख अंता सुख रास। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दो बचन गुरु अर्जुन देव जी दे। क्योंकि नाम ओ औखद है जेड़ा हर बीमारी दा इलाज करदा है, सर्व रोग का औखद नाम महाराज कहिंदे ने। कि उस पार ब्रह्म परमेश्वर गुरु अर्जुन देव जी दा बचन कहे, जे को होवै दुबला नंग भुख की पीर, दमड़ा पल्लै ना पवै ना को देवै तीर, स्वार्थ स्वाव ना को करै न किछ होवै काज, चित आवै ओस पार ब्रह्म ता निश्चल होवै राज। अर्थ बड़े सरल ने। मान लो कोई बंदा शरीरक तौर ते कमजोर है, उस नू तन ढकण वास्ते कपड़े भी कोई नहीं, ते सचमुच पेट भर के रज के रोटी खान रोजी भी कोई नहीं। जे को होवे दुबला नंग भुख की पीर, ए उनू दुख होवे, दमड़ा पल्ला ना पवे, वो अपने वालों मेहनत करदा, एक दमड़ी भी उस बंदे नू बचदी नहीं, उहदे पल्ले कुछ नहीं पैंदा। ना को देवे धीर, धीर दा अर्थ है धीरज। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਏ ਸੀ, ਨਾ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਕੱਪੜਾ, ਨਾ ਰੋਟੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਚੀਜ਼ ਪਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲੋਕ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੈ ਧੀਰ, ਸਵਾਰਥ ਸਵਾਉ ਨਾ ਕੋ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿਛ ਹੋਵੇ ਕਾਜ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜੇ। महाराज कहने, मेरे मना वाहगुरु नु जप, चित आवे ओस पार ब्रह्म ता निश्चल होवे राज। जे सत नाम वाहगुरु जपेगा सच, एवे तेनु आत्मक अवस्था दी ते बाहर मुखी भी दातां दी रहमत हो जाएगी। इस तो अगला बचन एक होर है महाराज जी दा। चलो मैं संखेप जे प्रमाण दे रहा, समय विच समाप्ति करनी है। हजूर सच्चे पातशाह जी दा एक बचन है, जाको चिंता बहुत बहुत, मेरे मन जपिया हर भगवंता। जाको चिंता बहुत बहुत, डिप्रेशन कह लो, मानसिक रोग हो गया, देही व्यापे रोग, क्योंकि उस चिंता ने मन दे फुरनिया ने तन नू रोगी कर दिता। जाको चिंता बहुत बहुत, देही व्यापे रोग, ग्रिस्त कुटंब पलेटिया कदे खरक कदे सोग। सुख आवे तां वी, दुख आवे तां वी, क्योंकि ग्रिस्त विच दुख सुख ते चलदा है। ग्रिस्त कुटंब पलेटिया कदे खरक कदे सोग, गौण करे चौकुंट का घड़ी न बैसन सोए, चित आवे ओस पार ब्रह्म तन मन शीतल होए। मैं फिर बेनती करांगा गुरु साहिब इत्थे इस अष्टपदी दा जो तत् भाव कह रहा हो, कहिंदे मेरे मन खरी परमात्मा दे नाम नू जप, जप मन सत नाम, सदा सत नाम, हलत पलत मुख उज्जल होई है, नित त्याई है हर पुरख निरंजना। जै हर सिमरन पया तै उपाद गत कीनी, वड भागी हर जपना, जन नानक कौ गुर एह मत दीनी, जप हर भवजल तरना। मेरे मन खरी नू जप, जेड़ा दुखां दरिद्रां दा ना

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह के होर दुख हैं। इन्हां सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: आप गवाए सो हर गुण गाओ,
1: प्रभ कृपा ते होई प्रकाश,
0: प्रभु दयाते कमल विकास,
1: प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोई,
0: प्रभ दयाते मत उतन होए,
1: सर्व निधान प्रभ तेरी माया,
0: आपो कछु न किन्हु लया,
1: जित जित लाभ हो तित लगहिं हर नाथ,
0: नानक इनके कछु न हाथ। श्लोक
1: अगम अगाध पार ब्रह्म सोई, जो जो कह सुमुखता होई,
0: सुनमीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। अष्टपदी
1: साध का संग मुख उजल होत,
0: साध संग बल सगली खोत,
1: साध का संग मिटे अभिमान,
0: साध का संग प्रगट सुज्ञान,
1: साध का संग बुझे प्रभ नीरा,
0: साध संग सब होत नबेरा,
1: साध का संग पाए नाम रतन,
0: साध का संग एको ऊपर जतन,
1: साध की महिमा बरने कौन पुरानी,
0: नानक साध की शोभा प्रभ महे समानी,
1: साध का संग अगोचर मिले,
0: साध का संग सदा प्रफुल्ल,
1: साध का संग आवे बस पंचा,
0: साध संग अमृत रस पुंचा,
1: साध संग होए सब की रेन,
0: साध का संग मनोहर बैन,
1: साध का संग न कथू पावे,
0: साध संग अस्तित्व मन पावे,
1: साध के संग माया ते भिन्न,
0: साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न,
1: साध संग दुश्मन सब मीत,
0: साधु के संग महापुनीत,
1: साध संग किस्यो नी बैर,
0: साध के संग न बीगा पैर,
1: साध के संग नाही को मंदा,
0: साध संग जाने परमानंदा,
1: साध के संग नाही हौ ताप,
0: साध के संग ते जैसा व्याप,
1: आपे जाने साध पढ़ाई,
0: नानक साध प्रभु बने आई,
1: साध के संग न कब हूं पावे,
0: साध के संग सदा सुख पावे,
1: साध संग बस अगोचर लहे,
0: साधु के संग अजर सहे,
1: साध के संग बस स्थान ऊंचे,
0: साधु के संग महर पहुंचे,
1: साध का संग दृढ़ है सब धर्म,
0: साध का संग केवल पार ब्रह्म,
1: साध का संग पाए नाम निधान,
0: नानक साधु के कुर्बान,
1: साध का संग सब कुल उधार है,
0: साध संग साधन बीत कुटम निस्तार है,
1: साधु का संग सो धन पावे,
0: जिस धन ते सब को बरसावे,
1: साध संग धर्म राय करे सेवा,
0: साध का संग शोभा सुर देवा,
1: साधु का संग पाप पलायन,
0: साध संग अमृत गुण गायन,
1: साध का संग सर्व थान गम,
0: नानक साध का संग सगल जनम,
1: साध का संग नहीं कष काल,
0: दर्शन भेट तो होत नहाल,
1: साध का संग कुलूकत हर है,
0: साध का संग नरक पर हर है,
1: साध का संग इहा उहा सुहेला,
0: साध संग विश्रत हर मेला,
1: जो इच्छा सोई फल पावे,
0: साध के संग न बिरथा जावे,
1: पार ब्रह्म साध रित बसे,
0: नानक कुदरे साध सुन रसे,
1: साध के संग सुनो हर नाउ,
0: साध संग हर के गुण गाओ,
1: साध के संग न मनते बिसरे,
0: साध संग सर पर निस्तरे,
1: साध के संग लगे प्रभ मीठा,
0: साधु के संग करगट दीठा,
1: साध संग भई आज्ञाकारी,
0: साध संगत भई हमारी,
1: साध के संग मिटे सब रोग,
0: नानक साध भेटे संजोग,
1: साध की महिमा भेद न जाने,
0: जिता सुन तिता बखियाने,
1: साध की उपमा तेह गुण ते दूर,
0: साध की उपमा रही भरपूर,
1: साध की शोभा का नाही अंत,
0: साध की शोभा सदा बेअंत,
1: साध की शोभा ऊंचती ऊंची,
0: साध की शोभा मूचती मूची,
1: साध की शोभा साध बनाई,
0: नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक
1: मन साचा मुख साचा सोई, अवर न पेखे
0: कस बिन कोई,
1: नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए।
0: अष्टपदी
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप,
0: जैसे जल में कमल लेप,
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख,
0: जैसे सूर सर्व को सुख,
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान,
0: जैसे राज रंक को लागे तुल पवान,
1: ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक,
0: ज्यों बसदा को खुदे को चिंतन ले,
1: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ,
0: नानक जो पावक का सह स्वभाव,
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला,
0: जैसे मैल न लागे जला,
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश,
0: जैसे तर ऊपर आकाश,
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्रु समान,
0: ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान,
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा,
0: मन अपने है सब ते नीचा,
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन भये,
0: नानक जन प्रभु आप करे,
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल की
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना,
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया,
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा न पया,
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी,
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी,
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता,
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता,
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान,
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास,
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश,
1: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा,
0: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा,
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा,
0: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा,
1: ब्रह्म ज्ञानी का होए सुफला,
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला,
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार,
1: ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग,
0: ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग,
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार,
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार,
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत,
0: ब्रह्म ज्ञानी अंगद त्यागत,
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद,
0: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद,
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश,
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का विता,
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता,
1: ब्रह्म ज्ञानी के होए अचिंत,
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र,
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप,
0: ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप,
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई,
0: ब्रह्म ज्ञानी को बरबर जाइए,
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे है महेश्वर,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर,
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है,
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगलवान माहे,
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने थे,
0: ब्रह्म ज्ञानी को सताया देश,
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदाखर,
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर,
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखान। जानै,
0: ब्रह्म ज्ञानी की कर ब्रह्म ज्ञानी जानै,
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार,
1: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता,
0: ब्रह्म ज्ञानी सत जीवै नहीं मरता,
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता,
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता,
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ,
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ,
1: ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार,
0: ब्रह्म ज्ञानी अपनकार,
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक,
1: और तारै जो अंतर नाम सर्व में भिखै भगवान, निमक निमक
0: ठाकुर नमस्कार, नानक ओह अपरस सगल निस्तार। अष्टपदी
1: मिथ्या नाही रसना परस,
0: मन में प्रीत नरंजन दर्स,
1: कर्त्रिया रूप न भिखै नेत्र,
0: साध के टहल संत संग हेत,
1: कर्ण न सुने काहू की निंदा,
0: सत्य जाने आपस को मंदा,
1: और प्रसाद विखिया पर हर है,
0: मन की वासना मन ते टर,
1: इंद्री जत पंच दोख ते रहत,
0: नानक कोट मदे को ऐसा परस,
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न,
0: विष्ण की माया ते हुए भिन्न,
1: कर्म कर्त हो वह ने कर्म,
0: इस वैष्णव का निर्मल धर्म,
1: काहू फल की इच्छा नहीं बांचै,
0: केवल भगत कीर्तन संग रचै,
1: मन तन अंतर सिमरन गोपाल,
0: सब ऊपर होवत कृपाल,
1: आप दृढ़ अबरह नाम जपावै,
0: नानको वैष्णव परम गत पावै,
1: भगवती भगवंत भगत का रंग,
0: सगल त्याग दुष्ट का संग,
1: मन ते बिनसै सगला भरम,
0: कर पूजै सगल पार ब्रह्म,
1: साध संग पापा मल खोवै,
0: इस भगवती की मत उत्तम होवै,
1: भगवंत की टहल करै नित नीत,
0: मन तन अर्पै विष्णु प्रीत,
1: हर के चरण हृदय बसावै,
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै,
1: सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है,
0: राम नाम आत्म सुध है,
1: राम नाम सार रस पीवै,
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवै,
1: हर की कथा हृदय बसावै,
0: सो पंडित फिर जोन न आवै,
1: वेद पुराण सिमरत बूझै मूल,
0: सुख मै जानै अस्थूल,
1: जो वरना को दे उपदेश,
0: नानक उस पंडित को सदा आदेश,
1: बीज मंत्र सर को ज्ञान,
0: जो वरना मै जपे को नाम,
1: जो जो जपै तिसकी गत होए,
0: सा संग पावै जन कोए,
1: कर कृपा अंतर उतार है,
0: बस प्रेत मुक्त पात्र को उतार है,
1: सर्व रोग का औखद नाम,
0: कल्याण रूप मंगल गुण काम,
1: काहू जुगत कितै न पाइया धर्म,
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म,
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास,
0: जिसका नाम सत राम दास,
1: आत्म राम तिस नदरी आया,
0: दास संतन पाए तिन पाया,
1: सदा निकट निकट हर जान,
0: सो दास दरगाह परवान,
1: अपने दास को आप कृपा करै,
0: जिस दास को सब सो जी पर,
1: सगल संग आत्म उदास,
0: ऐसी जुगत नानक राम दास,
1: सब की आज्ञा आत्म हितावै,
0: जीवन मुक्त सो कहावे,
1: ऐसा हरक तैसा उस होग,
0: सदा अनंत नाही वियोग,
1: ऐसा स्वर्ण तैसी उस माटी,
0: ऐसा अमृत तैसी बिख काटी,
1: ऐसा मान तैसा अभिमान,
0: ऐसा रंग तैसा राजान,
1: जो बरताए साई जुगत,
0: नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त,
1: पार ब्रह्म के सगले ठाऊ,
0: जित जित घर रखे तैसा तिन नाम,
1: आपे करन करावन जोग,
0: भावे सोई पन होग,
1: असरे आप होए अंत तरंग,
0: लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग,
1: जैसी मत दे तैसा प्रकाश,
0: पार ब्रह्म करता अविनाश,
1: सदा सदा सदा दयाल,
0: सिमर सिमर नानक पहे निहाल श्लोक,
1: उस्त करे अनेक जन अंत न पारावार,
0: नानक रचना प्रभ रची बहु विद्यनक प्रकार। अष्टपदी
1: कई कोट होए पुजारी,
0: कई कोट आचार व्यवहारी,
1: कई कोट भय तीर्थ वासी,
0: कई कोट बन प्रमय उदासी,
1: कई कोट वीर के स्रोते,
0: कई कोट तपीसर होते,
1: कई कोट आत्म ध्यान धारे,
0: कई कोट कब काव विचारे,
1: कई कोट नवतन नाम त्यावहे,
0: नानक करते का अंत न पावे,
1: कई कोट भय अभिमानी,
0: कई कोट अंध अज्ञानी,
1: कई कोट कृपन कठोर,
0: कई कोट अभिग आत्म ने कोर,
1: कई कोट पर दर्भ को हिरहे,
0: कई कोट पर दुख न करें,
1: कई कोट माया श्रम माहे,
0: कई कोट पर देश परमा है,
1: जित जित लाभ होते तित लगना,
0: नानक करते की जाने करता रचना,
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी,
0: कई कोट राजे रस भोगी,
1: कई कोट पंखी सर्प उपाए,
0: कई कोट पात्र वृक्ष न बजाए,
1: कई कोट पवन पानी बसंतर,
0: कई कोट देश भूमंडल,
1: कई कोट शशि सूर नक्षत्र,
0: कई कोट देव दानव इंद्र शिर छत्र,
1: सगल समग्री अपने सूत धार,
0: नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार,
1: कई कोट राजस्थान सातक,
0: कई कोट वेद प्राण स्मृति अर्शास्त्र,
1: कई कोट की रतन समुंद,
0: कई कोट नाना प्रकार जंत,
1: कई कोट की ये चिर जीवे,
0: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे,
1: कई कोट जख के निर्पिशाच,
0: कई कोट भूत प्रेत सो कर मृगाच,
1: सब ते नेरा सब हूं ते दूर,
0: नानक आप लिवतरे आप प्रभूर,
1: कई कोट पाताल के वासी,
0: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी,
1: कई कोट जन्म है जीव है मर है,
0: कई कोट बहु जोनी फिरे,
1: कई कोट बैठ सही खाहे,
0: कई कोट काले थक पाहे,
1: कई कोट की ये धनवंत,
0: कई कोट मैं चिंत,
1: जय जय भाणा तह तह राखे,
0: नानक सबके ਬਖਸ਼ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਭਈ ਬੈਰਾਗੀ,
0: ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਖਤ ਲਿਵ ਲਾਗੀ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜ ਅੰਤੇ,
0: ਆਤਮ ਮਹਿ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਿਆਸ,
0: ਜਿਨਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਵਿਨਾਸ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗ ਹੈ ਸਤਸੰਗ,
0: ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ,
1: ਜਿਨਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ,
0: ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ,
0: ਕਈ ਜਗ ਕੀ ਨੋ ਵਿਸਥਾਰ,
1: ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ,
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਕਾਰ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ,
0: ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਤ,
1: ਤਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ,
0: ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ,
0: ਜਿਨ ਹੋ ਵਤਿਆ ਤਨ ਪ੍ਰਗਾਸ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਦੇਤੇ,
0: ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੈ ਇੱਕੋ ਨੇਤਰੇ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ ਹੈ,
0: ਅਮਰ ਭਏ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ,
0: ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਵੈ,
1: ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸੰਭਾਰੀ,
0: ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਲੋਕ,
1: ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਈ,
0: ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰ ਨੇ ਜਲ ਥਲ ਮਈ ਅਲ ਸੋਏ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ,
0: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ,
1: ਜਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪ ਉਥਾਪ ਨਹਾਰਾ,
0: ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ,
1: ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਧਾਰ ਰਹਾਵੈ,
0: ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ,
1: ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ,
0: ਹੁਕਮੇ ਐਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ,
1: ਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ,
0: ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ,
1: ਕਾ ਭਾਵੈ ਮਨੋ ਗਤ ਪਾਵੈ,
0: ਕਾ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਤਰ ਤਰਾਵੈ,
1: ਕਾ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖੈ,
0: ਕਾ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਖੈ,
1: ਕਾ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤ ਉਧਾਰੈ,
0: ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੈ,
1: ਦੋਹਾਂ ਸਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ,
0: ਖੇਲੈ ਬਿਕਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ,
1: ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ,
0: ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨ ਆਵੈ,
1: ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੈ,
0: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ,
1: ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਪਿਛਲੇ,
0: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ,
1: ਮਨ ਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਚੈ,
0: ਜੇ ਜਾਣਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚੈ,
1: ਭਰਮੇ ਭੁੱਲੈ ਦਹਿ ਦਿਸਤਾਵੈ,
0: ਨਮਕ ਮਾਹੀ ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਫਿਰ ਆਵੈ,
1: ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ,
0: ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ,
1: ਛਿਨਵੈ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ,
0: ਬਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ,
1: ਜਾਂ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੈ,
0: ਜਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦਹਿ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ,
1: ਜਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼,
0: ਤਾਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਕਣੇ ਜਗਦੀਸ਼,
1: ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ,
0: ਪ੍ਰਗਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ,
1: ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਣਾਈ,
0: ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਵਡਾਈ,
1: ਇਸ ਕਾ ਬਲ ਨਾਹੀ ਇਸ ਹਾਥ,
0: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ,
1: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪਰਾ ਜੀਓ,
0: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫਨ ਥੀ,
1: ਪ੍ਰਭੁ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ,
0: ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਗ ਹਰ ਕਰੰਗ ਹੱਸੈ,
1: ਪ੍ਰਭੁ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ,
0: ਪ੍ਰਭੁ ਉਭੈ ਕਾਸ ਪਿਆਲ,
1: ਪ੍ਰਭੁ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ,
0: ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਨ ਹਾਰ,
1: ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤ,
0: ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਏ ਰਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ,
1: ਪ੍ਰਭੁ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ,
0: ਪ੍ਰਭੁ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਰਵਾਲ,
1: ਪ੍ਰਭੁ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬੜ ਰਾਜਾ,
0: ਪ੍ਰਭੂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ,
1: ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਕੀਰਤ ਮੈਂ ਆਵੈ,
0: ਪ੍ਰਭੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ,
1: ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵਹੀ ਰਹੈ,
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸਚ ਕਹੈ,
1: ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਏ ਪੰਡਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ,
0: ਪ੍ਰਭੂ ਮੋਹਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ,
1: ਪ੍ਰਭੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ,
0: ਪ੍ਰਭੂ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ,
1: ਪ੍ਰਭੂ ਪੀਠ ਹਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ,
0: ਅਨਕ ਜੋਨ ਭਰਮੈ ਪਰਮੀਆ,
1: ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜਿਉਂ ਸਵੰਗੀ ਦਿਖਾਵੈ,
0: ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨ ਜਾਵੈ,
1: ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ,
0: ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ,
1: ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪਾਵੈ,
0: ਉਸੇ ਥਾਨ ਤੇ ਬੌਰ ਨ ਆਵੈ,
1: ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ,
0: ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼,
1: ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ,
0: ਸਦਾ ਬਸੈ ਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ,
1: ਜਿਉਂ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲ ਆਏ ਕਟਾਨਾ,
0: ਜੋ ਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ,
1: ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ,
0: ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਸਲੋਕ,
1: ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ,
0: ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ,
0: ਸੋ ਨਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸਵਾਨ,
1: ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋ ਬਨਵੰਤ,
0: ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ,
1: ਆਪ ਸੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ,
0: ਜਨਮ ਮਰੈ ਭਉ ਜੋਨ ਪ੍ਰਭਾਵੈ,
1: ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ,
0: ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ,
1: ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ,
0: ਨਾਨਕੀ ਹੈ ਮੁਕਤਿਆ ਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ,
1: ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਭਾਵੈ,
0: ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਾ ਸਚੰਗ ਨ ਜਾਵੈ,
1: ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਨੁੱਖ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ,
0: ਪਰ ਭੀਤਰਤਾ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ,
1: ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ,
0: ਹੋਏ ਜਾਏ ਬਸਵੰਤ,
1: ਸੈਨਾ ਬਦੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ,
0: ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ,
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਂ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ,
0: ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ,
1: ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹੋਂ ਧਾਰੀ,
0: ਸਰਮ ਪਾਵੇ ਸਗਲੇ ਬਰਥਾਰੇ,
1: ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਹੰਕਾਰ,
0: ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ,
1: ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ,
0: ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਉ ਕੈਸੇ ਗਵੈ,
1: ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ,
0: ਕਿਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ,
1: ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾਂ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ,
0: ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ,
1: ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ,
0: ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ,
1: ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ,
0: ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ,
1: ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ,
0: ਤਬ ਲਗ ਨਿਸ਼ਚਲ ਨਾਹੀਂ ਚੀਤ,
1: ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ,
0: ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ,
1: ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ,
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਾਂ ਛੁਟੈ,
1: ਸਹਿਸ ਕਟੇ ਲਖ ਕੋਟ ਧਾਵੈ,
0: ਰਤਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ,
1: ਅਨਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ,
0: ਨੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਪ ਖਪ ਮਰੈ,
1: ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ,
0: ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਫਿਰ ਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ,
1: ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ,
0: ਪ੍ਰਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ,
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ,
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਪ,
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰ,
0: ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ,
1: ਜੈ जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप प्रभ सोए
1: जो कुछ पीनो सो अपना रंग
0: सब ते दूर सब हो कै संग
1: दूजा देखा करे विवेक
0: आपे एका पया ने
1: मरे न बिनसा आवे न जाए
0: नानक सधी रह समाए
1: आप उपदेश समझे आप
0: आपे रचिया सब कै साथ
1: आप कीनो अपन विस्तार
0: सब कुछ उसका ओ करने हार
1: कोसते भिन्न कहो किश होए
0: अंत अंतर एक सोए
1: अपने चलित आप करना हार
0: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद के नै बखियानी
1: सत सत सत सब कीना
0: कोट मदै के बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: कट कट सुने सर उन बखियानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
0: नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत शरण जो जन पर सो जन उदर नहार
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत का दुखन हार जा कटै
0: संत का दुखन जमते नहीं छुटै
1: संत का दुखन सुख सब जाए
0: संत का दुखन नरक में पाए
1: संत का दुखन मत होए मलीन
0: संत का दुखन शोभा देहीन
1: संत के हथे को रखे ना कोई
0: संत का दुखन थान भ्रष्ट होए
1: संत कृपाल कृपा जे करै
0: नानक संत संग नंदक बीतर
1: संत के दुखन ते मुख पवै
0: संतन के दुखन काग ज्यों लवै
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत का दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन का दुखन तृष्णा मह जलै
0: संत का दुखन सब को छलै
1: संत का दुखन तेज सब जाए
0: संत का दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाओ को नाही
0: नानक संत भावै ता ए पी कत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
0: संत का निंदक खन टिकन न पाए
1: संत का निंदक महा हत्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज ते हीन
0: संत का निंदक दुखिया अरदीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक को सदा बिजोग
1: संत के निंदा दुख मैं दुख
0: नानक संत भावै ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा पवित्र
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित्र
1: संत के दुखी को डान लगे
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी
0: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत की दुख न सुख ते तरे
1: संत के दुखी को ना ही ठाऊ
0: नानक संत भावै ता लय मिलाए
1: संत का दुखी अद भी किते टूटे
0: संत का दुखी किते काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को उदयान परमाइए
0: संत का दुखी उजड़ पाइए
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा
0: जो सास बिना मृतक की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किस नाही
0: अपन बीजा पे ही खाहे
1: संत के दुखी को अवर न रखन हार
0: नानक संत भावै ता लय उबार
1: संत का दुखी इउ बिल लाए
0: ज्यों जल बे होन मछली तड़फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजै
0: जो पावक ईंधन नहीं त्रापै
1: संत का दुखी छुटै अकेला
0: ज्यों बवार तिल खेत माहे दुहेला
1: संत का दुखी धर्म ते रहत
0: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
1: कीर्तन निंदक का धुर ही पया
0: नानक जो तिस भावै सोई थिया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
0: संत के दुखी को दरगह मिलै सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाइए
0: संत का दुखी ना मरै ना जिवाइए
1: संत के दुखी की पूजै ना आसा
0: संत का दुखी उठ चले निराशा
1: संत के दुख न त्रिष्टै कोई
0: जैसा भावै तैसा कोई होए
1: पया कीर्तन मिटै कोई
0: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब कर तिसकी ओ करने हार
0: सदा सदा तिसको नमस्कार
1: रापी उसत करहो दिन रात
0: तिसे त्याहो सास ग्रास
1: सब कछ वर्तै तिसका किया
0: जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेला करने हार
0: दूसर कौन कहे विचार
1: जिसनु कृपा करे तिस आपन नाम दे
0: वड पागी नानक जन से श्लोक
1: तजो सियान पुसुर जन हो सिमरो हर हर गाए
0: एक आस हर मन रखो नानक दुख परम को जाए अष्टपदी
1: मनुख की टेक बिरती सब जान
0: देवर को एक है भगवान
1: जिसके दिया रह अगाहे
0: और न तृष्णा लागे आए
1: मारे राखे एको आप
0: नानक कै कृष्णा ही हाथ
1: जिसका हुकुम भू सुख होए
0: जिसका नाम रख कंठ परोए
1: सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए
0: नानक बिघन न लागे कोए
1: उसत मन में कर निरंकार
0: कर मन मेरे सत व्यवहार
1: निर्मल रसना अमृत पियो
0: सदा सहेला कर ले जियो
1: नैनो भेख ठाकुर का रंग
0: सह संग बिन सह सब संग
1: चरण चलो मार्ग गोविंद
0: मिटा पाप जपिए हर बिंद
1: हर हर कर्म श्रवण हर कथा
0: आदर ज्ञान नानक उजल मथा
1: बड़ भागी ते जन जग माहे
0: सदा सदा हर के गुण गाहे
1: राम नाम जो करे विचार
0: चेतन मंतक नि संसार
1: मन तन मुख बोले हर मुखी
0: सदा सदा जानो ते सुखी
1: एको एक एक पछाने
0: ते तुत कियो सोजी जाने
1: नाम संग जिस का मन मानिया
0: नानक तने निरंजन जाने
1: गुर प्रसाद अपने आप सुजै
0: जिसकी जानो तृष्णा बुझे
1: सात संग हर हर जस कहत
0: सर्व रोग त्यो हर जन रहत
1: अन दिन कीर्तन केवल बखियान
0: तमा सोई निर्वाण
1: एक ऊपर जिस जन की आसा
0: जिसकी कटिए जम की फसा
1: पार ब्रह्म की जिस मन भूख
0: नानक प्रसन्न लागे दुख
1: जिसको हर ब्रह्म मन चिते आवे
0: सो संत सोहेला नहीं दुलावे
1: जिस प्रभु अपना कृपा करे
0: सो सेवक को किसते डरे
1: जैसा सत ऐसा दृष्ट आया
0: अपने कार्य में आप समाया
1: शोधत शोधत शोधत सीजया
0: प्रसाद तत् सब पूजे
1: जब देखो तब सब शमूल
0: नानक सो सूक्ष्म सोई स्थूल
1: मैं किस जन मैंने किस मरे
0: अपन चलते आप ही करे
1: आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ
0: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ
1: ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮਹਿ ਆਪ
0: ਜੁਗ ਤਰਚ ਥਾ ਪਿਉਥਾ
1: ਅਵਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਖੰਡ
0: ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮੰਡ
1: ਲਖ ਭੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾ ਨਾਨਕ ਜਾਪ
1: ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋਭਾਵੰਤ
0: ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਨ ਮੰਤ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ
1: ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਈ ਕਿਰਪਾਲ
0: ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਭਏ ਨਿਹਾਲ
1: ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਹੀ ਲਾਗੈ
0: ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਟ ਭਾਗੈ
1: ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੇ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਨਾਨਕ ਤਨ ਪੁਰਖ ਕੋ ਉਤਮ ਕਰ ਮਾਨ
1: ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੈ ਹਰ ਸੰਗ
1: ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ
0: ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਏ
1: ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ
0: ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ
1: ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਾਹੀ ਸਮਾਈ
0: ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ

चल लेंगे। वीर अपार बड़े बरियार अबिचार सार की तहर पछैया तोरत देश मलिंद मवासन माते के जान के मान मलैया गाड़े गढ़ान के तोड़न हार सो बातन ही चाक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाच के अनेक सो एक दिवैया दानव देव निंदन साचर भूत भविख पवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैद तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जाग सत्र सवै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नराधप जाउन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाजक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर।

हे दुख सब विसारण अंगीकारू हूँ करे तेरा कार्य सब सुवारणा सब ना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच साहिबा क्या नाही कर तेरा करता तेरा सब किश है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कार तेरे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो जिस दी आए हे वडियाई आ कह नानक सुनहु संता हो सब तरहु प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित कर सुभाग्या शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया तुहर कर्म पाया तुद जिन काओ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होवा तित कर अनहद वाजे साची लिवै बिन देहन माणी देहन माणी लिवै वाज हो क्या करे बेचारिया तुद बाज समरथ कोय नाही कृपा कर बनवारिया ए सनाओ होर थाओ नाही शब्द लग सवारिया कह नानक लिवै बाज हो क्या करे बेचारिया आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किले विह कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदर हो जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सचै सवारिया कह नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू देह सोई जन पावै पावै तन सो जन देह जिसनो होर क्या करे बेचारिया एक भरम भूले फिर दह दिस एक नाम लाग सवारिया गुर प्रसादी मन पहया निर्मल जिना पाणा पावे कह नानक जिस देह प्यारे सोई जान पावे आव हो संत प्यारे हो अकाथ की करह कहानी करह कहानी अकाथ केरी केत दुवारे पाईए तन मन धन सब सौप गुर काओ हुक्म मन्या पाई है हुक्म मन्ने हो गुरु के रागा वो सच्ची बाणी कह नानक सुनो संत हो कथियो अकथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किनै ना पाया चतुराई ना पाया किनै तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया माया ता मोहनी इतने कीती जिन ठगौली पाईया कुर्बान कीता तिसै विट्टा हो जिन मोह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतुराई किनै ना पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले एहो कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही तेरे नाले सा

दंडावत बंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ डोलन ते राखह प्रभु नानक दे कर हाथ दार मादे ठाडे दरबार तुझ बिन

अनन कहे सदगु आया बुद्ध को पाया दूजा पाया वस्त्र न पहरे निष्करे मुन भगुता क्यों जागे गुरु ने सूता पगु पेता ने अपना किया कमाना अल मलकाई शिशाई पाई मूर्खेंद्र पतगवाई बिड़ना वे कुश्ताई न पाई रह बिबाणी मड़ी मसानी अंदर ना जाने बिरपुष्टान।

दंडौत बंदन अनकबार सर्व कला समरथ डोलन ते राखह प्रभु नानक दे कर हाथ सगल गुणा के दाते स्वामी बिना सुनो एक दीना देह दर्श नानक बलिहारी जीड़ा बल बल कीना सुकाह टल गोर सेविया अहनस सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसाम दी नूर अरसों कुरसों चटिया

मैं एक दफा जींद दे च गऊ लै बैठा, खरीद बैठा, बड़ी खूबसूरत सी, चंगी लगी मैनू। हर साल मैं उत्थे धन गुरु नानक देव जी महाराज दे ज्योति जोत समान पुरब ते जाना हुंदा। महापुरखां दा डेर है वह मनांदे ने, संत जीवन शाह सिंह जी दा डेर। वह मेरे को पुछण लगे, सुनया तुसी गऊ खरीदी है? मैं क्या, जींद ते रोहतक एक गऊआं करके मशहूर है, अच्छिया अच्छिया गऊआं। मैं क्या मैनू बड़ी चंगी लगी है, मैं ले लई। वह आ गए, कहन लगे मैनू दिखाओ। मैं क्या देखो, जींद शहर विच बड़िया सरावां ने जो गऊआं नाल भरिया रहिंदियां ने। मैं चल के दिखाई, उन्होंने अपना हाथ सिर ते दे मारिया। कहने लगे ज्ञानी जी इनू लेके जा रहे हो? मैं क्यों, ये ठीक लक्षण नहीं ने, औखे होवोगे, दुखी होवोगे। ये सिर्फ दिसण नू खूबसूरत है, बाकी ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। थानू लक्षणा का पता नहीं, सानू पता है। जे तुसी गौ लेनी है ते असी थानू लेके देंगे। वो जिस व्यापारी को मैं लई जाके संता ने उन्हों डांटिया भी ये मिसकीन और इन्हू गऊ तक डंग दी देनी सी, ये की कीता है तू? वो हाथ जोड़ के कहन लगा, महाराज जी की करिए, इन्होंने आप ही पसंद की है, इन्होंने आप ही पसंद की थी। वो कहन लगे इन्हों लक्षणा का पता नहीं है। वाकई मैनू गऊ दे लक्षणा का पता नहीं। कुछ लक्षण ऐसे ने दिस पैंदा है, इराकी घोड़ा है, वधिया घोड़ा है, ये वधिया गऊ है। लक्षण ही दस देंदे ने, इस जमीन वधिया है, धरती वधिया है, ऐसे खोजी मौजूद ने। अज ते विज्ञानक ढंग नाल खोज करदे ने, ये धरती बड़ी उपजाऊ है, बहुत वधिया है। लेकिन पुराने जमाने दे सूईए लक्षण देखदे सन। तो मैं अर्ज करा, मनुख धार्मिक है, धार्मिक मनुख दे कुछ लक्षण होंदे ने, ये भी मैं अर्ज करते। उन्हां लक्षणां तो पता चलता है धार्मिक है, मनुख संत है, भगत है। लक्षणां तो पता चलता है संत है, भगत है। ये लक्षण ते मैं बाद विच बयान करांगा। पहले गुरु अर्जन देव जी महाराज दा पावन पवित्र शब्द, वो कहिंदे ने मैं धर्म दे मार्ग ते चलिया ते हां अपने उत्ते लेंदे ने। मैं उस बच्चे दी तरह चलिया जिसने अज चलना सिखिया, ते जिस बच्चे ने अज ही चलना सिखिया वो कितना क चलेगा? एक कदम, दो कदम, गिरेगा, गिरेगा, लाजमी गिरेगा। बच्चा लंबा पेंडा तय नहीं कर सकता। जैसे शरीरक तौर ते मनुख बच्चा होवे, ते ओ बच्चा जिसने अज चलना सीखा है कितना क चलेगा? एक कदम, दो कदम, गिरेगा, गिरेगा। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा शब्द बड़े ध्यान नाल सुनना। भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया, सर्वन ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। हे प्रभु, हे गुरु, तू मेरी बांह पकड़, मेरी उंगल पकड़, मैं नहीं चल सकता, मैं ते गिरदा। वाकर दी लोड़ पैंदी छोटे मासूम बच्चे नू चलन वास्ते। मां बाप दी उंगल पकड़ के चलना सिखदा है। सतगुरु कहिंदे ने, हे प्रभु, मैं तेरे मार्ग ते चलते पिया, पर उस बच्चे दी तरह जिसने अज चलना सिखिया, तो कितना क चलेगा? एक कदम, दो कदम, गिरेगा।
धार्मिक तल ते किवें पहचान करोगे, चल भी रहा ते गिर भी रहा। सच बोलिया चल पिया, झूठ बोलिया गिर गया। अंदर दया का वासा होया चलिया, अंदर कठोरता का वासा होया गिर गया। अंदर दान की रुचि पैदा हुई है चल पे, अंदर बेईमानी की रुचि हुई है गिर गया, गिर गया। अंदर नितनेम करण का चाव पैदा होया चल पे, पर गंदा लिटरेचर गंदा साहित्य पढ़न का चाव पैदा हो गया, गिर गया। हमेशा शरीर करके बच्चा बच्चा नहीं रहता। धार्मिक तरते ते कई 70-80 साल तक भी बच्चे ही बने रहते, कुछ भी नहीं, चलते ने गिरते ने, सत्संग भी कर लेंगे ने, कुसंगत भी कर लेंगे ने, दान भी कर लेंगे ने, बेईमानी भी कर लेंगे ने, सच भी बोल लेंगे ने, झूठ भी बोल लेंगे। जीवन भर ऐसा चलता है। इस वास्ते ईरानी सूफी संत सादी ने ते साफ कह देता है, बुजुर्गी बा अकल अस्त नके बा साल, तवंगरी बा दिल अस्त नके बा माल। बुजुर्गी उम्र करके नहीं है भई ये 70 साल का है, 80 साल का है, 90 साल का है, कहिंदन उम्र करके बुजुर्गी नू ना नापो, अकल करके नापो। अकल कितनी है, समझ कितनी है। कई तन करके बुजुर्ग होंदे ने, अकल करके बच्चे ही होंदे ने, बच्चियां दी गल करदे ने, बिल्कुल बचपना होंदा है। इस तो उल्ट भी हो सकता है, कई शरीर करके ते बच्चे होंदे ने, अकल करके बुजुर्ग होंदे ने। शरीर करके ते साढ़े पंज वरियां दे ने धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज, जिस दिन गुरगद्दी ते बैठे ने। अकल करके 100 साल देने बुजुर्ग ने, महान ने। शरीर करके जो दीवारां दे चिने जा रहे ने, मासूम बच्चे ने, मासूम बच्चे ने, अकल करके बुजुर्ग ने, बुजुर्ग ने। इस तो उल्ट भी है, शरीर करके ते बुजुर्ग ने 70 साल 80 साल हो गए, अकल करके निरे ही बच्चे दे बच्चे ने। मैं कैलीफोर्निया के कई गुरुद्वारों में देखे 70-80 साल के बुढ़े 10-11 बजे आ जाते हैं गुरुद्वारे, दिन भर ताश खेडते हैं कई गुरुद्वारे, गप्पा मारते हैं, निंदा उस्तत करते हैं, फिर जो संध्या होने लगती है, रहराज साहब का पाठ शुरू होता है, कथा कीर्तन का वेला भजते हैं, इंज जिमें बिच्छू कटेगा भजते हैं। गुरुद्वारे का नाम है की लिया, मैनू कहना पिया एक नू, जद जान लगे मैं कह तीन जथियां का कीर्तन है अज, एक जथा दरबार साहब तो आया, दो होर वड्डे जथे दिल्ली तो आए ने, ते मैं कथा भी करनी है, रुक जाओ। कहिंदे इत्थे हुंदा ही रहिंदा, इत्थे होर की होना, इत्थे हुंदा ही रहिंदा। तो उत्थे मैनू कहना पिया ये उम्र करके बुजुर्ग ने, अकल करके बच्चे ने, अकल करके बच्चे। गुरु हरकृष्ण जी महाराज तन करके शरीर करके बच्चे ने, अकल करके बुजुर्ग ने। कलगी धर दे लाडले तन करके बच्चे ने, अकल करके बुजुर्ग ने। 7 साल दा प्रहलाद बुजुर्ग है, 60 वरियां दा हरनाकश बच्चा है। प्रहलाद नू कहिंदा है तू जपया कर, जल हरनाकश थर हरनाकश, जब तू जपेगा ते तेनू देख के बाकी बच्चे भी जपणगे। ते 7 वरियां दा प्रहलाद कहिंदा है बापू की बच्चियां वाली गल करदे हो, जल है राम थल है राम। 7 साल का बच्चा बुजुर्गों वाली गल करता है, और 60 साल का बुढ़ा बच्चियां वाली गल करता है। बच्चियां दे कदी कदाई कोई
कोई बुजुर्ग होंदे ने, बुढ़िया दे च बहुते ते बच्चे ही होंदे ने, गुस्ताखी मर बच्चे ही होंदे, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। जिंदगी एवें गवाई जांदे ने। ताश खेडदे होया नो एक सज्जन ने पूछ लिया, की कर रहे हो? समा पास पै कर दे। फिर मेनू विचकार बोलना पे, समा रहा भी है, तुसी ते आखरी दहाने ते बैठे हो, समा रहा भी है, समय नू सफल करो जिहड़ा थोड़ा बहुत रह गया। अजो समझ कुछ बिगड़े हो ना ही, बजले नाम मोरा, अजे भी कुछ नहीं बिगड़िया, तू संभाल कर ले। पर नहीं, अकल नहीं इतने। शेख सादी कहंदे ने, बुजुर्गी बा अकलस्त नखे बा साल, तवंगरी बा दिलस्त नखे बा माल। अमीरी माल असबाब तो ना ना पोए दे कोले इतने मकान ने, इतनिया महल माड़िया ने, इतना कारोबार है, इतना बैंक बैलेंस है, इतनी धन संपदा है। शेख सादी कहंदे ने, ए अमीरी दी निशानी नहीं, दिल कितना वड्डा है। इस तो पता चलेगा शूम है कि अमीर है, गरीब है कि अमीर है। दिल तो ना पो। मुहम्मद साहब दे निकटवर्ती हजरत उमर, ए बसरा तो बगदाद जा रहे सन, उठते रस्ते दोपहर होई, नखलिस्तान उसनू कहने जिते चार पांच दरख्त होवन, थोड़ा जिहा पानी होवे सरोवर, उन्हों नखलिस्तान कहंदे ने। अरब देशां विच आखिर उसकी बहुत महानता होंदी है। उत्थे रुके आराम करन नू, उठ नू दरख्त नाल बने है, पानी नाल मूंह धोता है। एक नान कोल सी रोटी, खोल के जैसे खान लगे कि भिखारी आ गए। भिखारी नहीं सी, पर चूंकि मंगदा पिया सी, इस वास्ते मंगता। उन्हें आखिया, हजरत मैं तीन दिन का भुखा। कूत शहर विच मैं जाना है, अजे बहुत दूर है, मैं भुखा पहुंच भी सकांगा कि नहीं, पैदल हाँ, तुहाडे कोल उठ है, बेहतर होवेगा इस नान दा चौथा भाग मैनू दे दो, चौथा हिस्सा, मेरी थोड़ी भुख मिट जाएगी, मैं चल पवांगा। हजरत उमर ने सारा नान ही दे दिता, ले। पर ओ भी समझदार बंदा सी, कहन लगा, नहीं तुसी भुखे जाओ, मेरा हिरदा ए भी कबूल करन नू तैयार रहे, मैनू इसका चौथा भाग दे दो। पता है हजरत उमर ने की आख्या? तू तीन दिन का भुखा, मैं अधे दिन का भुखा, मेरे ते नान खाना हराम है, ए ले तू। उस मनुख ने आख्या, पहली दफा एक अमीर मनुख देखे, अमीर मनुख।

जपो त एको नामा अवर निराफल कामा अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम ए रब्बी दौलत ए रब्बी सवात धन गुरु नानक देव जी महाराज सारियां दी झोली च पावे सारियां दियां झोलियां भरन सारियां दी जिंदगी सफल होवे सारियां दा और इत्थों दे मुखी सजणां दा सारियां दा बार बार हार्दिक तौर ते धन्यवाद बोल चुक दी शमा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।